0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक वही विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। वो ऐसा है, पूरे आया अपने कृत दे च, पूरे आया। उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है। मनुख दी पहचान एक ते रूप तो होंदी है, एक उसके स्वभाव तो होंदी है। हो सकता है रूप बड़ा सुंदर होवे, स्वभाव बड़ा भैड़ा होवे। हो सकता है स्वभाव बड़ा चंगा होवे, रूप बड़ा भैड़ा होवे, क्रूप होवे, चंगा ना लगे। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बांवां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, अठ थां तो शरीर दे च बल करो। उस जमाने दे च दुनिया दा सब तो करूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने दा मन करके स्वभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, स्वभाव चंगा है। तो एक बंदे दी पहचान होंदी है उसके रूप तो, दूजी पहचान होंदी है उसके स्वभाव तो। परमात्मा दा स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता है अपने कृत दे च पूरे होया। उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्वैर है, निर्भय। उदे अंदर भय नहीं है, वैर नहीं है। जिथे उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, उथे उसके स्वभाव दे च उदी होंद दे च समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। इसनों मैं खोला ते मंगलाचरण मूल मंत्र दे च समा लग जाएगा, उदे समा भी नहीं है। परमात्मा च समा नहीं है। अकाल, काल समय नूं कहिंदे ने, वक्त नूं कहिंदे ने। एक निक्का जिहा नुक्ता, तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है। जगह ही नहीं है, मनुख कित्थे बैठेगा, जगह ही नहीं है कित्थे काम करेगा, जगह ही नहीं है किवें भजेगा दौड़ेगा। तन भजदा है, दौड़दा है, उठदा है, बैठदा है, काम करदा है स्थान दे च, मन भजदा है समय दे च। इहनूं स्थान दी लोड़ नहीं है, इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय दे च दौड़दा है, केड़े समय च दौड़दा है, गुजरे हुए समय दीआं यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता चला जाता है। मनुख कदी चिंता च बैठा हुंदा, कदी यादां विच डुबिया बैठा। गुजरे समय दीआं यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता दा बोझ। किसे वक्त फिर खुलासा। परमात्मा उस समय विच, उत्थे समय ही नहीं है, समय परमात्मा करके है, समय करके परमात्मा नहीं, असी समय करके हां। सानू समय ने बनाया, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं। सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शुजु अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा। सकल काल का किया तुमा सारा आकार, ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है समा मिटा देगा, जो समय दे च आया है समा उसनों रुखसत कर देगा, जो समय दे च बने है समा उसनों मिटा देगा। उस समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय। इस वास्ते अकाल, कोई ये ना समझे कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। कि मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए, किसी ने घड़िया होगा, किसी तो जमया होगा। एकदम सतगुरु कहते हैं अजो नहीं, जमया नहीं, अजन्म है, अमरण है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है? सैभं, संस्कृत का शब्द है स्वयं भू, अपने आप तो प्रभू होया, अपने आप तो प्रकट होया। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभं,
ਸ਼ੰਭੂ ਸਵੈਭੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸੈਭੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੁਖਤਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुन करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा आउंदी ने ते मनुख कर। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच इक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुरु कहंदे ने, यक अर्ज इक मेरी अरजोई, इक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने। ऐ करतार जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आउंदा है उथे ही उसदे कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकदे, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आउंदियां, उसदी जबान उथे ही आउंदी है, उसदियां अखां उथे ही आउंदियां। जिथे है उथे वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा। जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है, फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

0: प्रगट हो जाती है, हे प्रभु मैं ऐसा हाँ, मेरा मन ऐसा है, मेरा तन ऐसा है। परमात्मा दे अगों अपने गुण नहीं रखे जा रहे, अरदास दे च जोदड़ी च औगुण रखे जा रहे। हां जी, नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, हे प्रभु मेरा हाल की होना, मेरी दशा की होनी, मेरे नाल तू की फैसला करेगा। थर हर कंपे बाला जियो, ना जाना क्या करसी पियो, क्योंकि नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, उन्हां दे उत्ते मैं हाथ ही नहीं पांदा। हे प्रभु पता नहीं, हे खुदा पता नहीं मेरा की हाल होना। हां जी, आखरी पंक्तियां, बद बख्त हम चू बकील गाफल बे नजर बे बाक, नानक भगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। बद बख्त, हे प्रभु मैं चंगी किस्मत वाला भी नहीं हूं। एक नुक्ता बयान करके मैं समाप्ति करा। सिख सदी साहब कहें बद बख्त कौन है, कहिंदा मैं नजूमी ते नहीं हां, ज्योतिषी ते नहीं हां, पर मैं दस सकदा बदबख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसे बदबख्त कस अस्त, केड़ा मनुख बदकिस्मत है बदबख्त है, कि दर राह तश रंज दीगर कर कस अस्त, जो दूजे दे नुकसान विच नफा देखता है, जो दूजे दी बेस्ती दिच इज्जत लगता है, जो दूजे दी टेंदी कला च चढ़दी कला लगता है, जो दूजियां दे रोने दिच हासे लगता है। शेख सादी साहब कहने दुनिया दा बदबख्त बंदा है कदी हस नहीं सकेगा, क्यों दूजियां दे रोने दिच हासे लगता है, कदी नफा नहीं होवेगा, क्यों दूजियां दे नुकसान दिच नफा लगता है। कहिंदा मैं ज्योतिषी नहीं हां, मैं नजूमी नहीं हां, पर मैं कह सकता ऐसो वास्ते गुरबाणी दा फैसला, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। सतगुरु थे कह रहे मैं चंगी किस्मत वाला नहीं हूं, बदबख्त बदबख्त हम चू बखील गाफल, फिर मैं चुगलखोर भी हां। गल वधा के बयान करदा, जर्रे नू पहाड़ बनाना, बुराई ते जर्रा मात्र सी पहाड़ दसदा, बखील भी हां चुगलखोर भी हां। बदबख्त हम चू बखील गाफल, हे प्रभु मैं गाफल भी हां, अचेत भी हां, सुचेत भी नहीं हां, सावधान भी नहीं हां, स्याणा भी नहीं हां। बदबख्त हम चू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, तैनू वेख सका हे प्रभु मेरे को अखां भी कोई नहीं, बेनजर हां। अंधे नू बेनजर कहिंदे ने, मेरे को नजरां कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, बेबाक। दूसरा मैं मुंह फट बड़ा, जो मुंह चाहती है कह देना, ए नहीं देखता मौका की है, महल की है, वातावरण की है, समाज की है, और टिकाणा की है, देखता ही नहीं, बेबाक हां, जबान काबू च नहीं, बेबाक हां। आखिरी पंक्ति दे सतगुरु देव जी महाराज जो कुछ कहते ने, नानक भगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाहा, नानक दीक अरजोई तो नहीं मिलता ते ना सही, तेरे दर्शन नहीं थे ना सही, जो तेरे मार्ग ते चल देन तेरे चाकर ने उना दी खाक बना दे, उना दी राख बना दे, उना दे चरना दी धूड़ बना दे, उना दे कदमा दी खाक बना दे, तू नहीं मिलदा ते ना सही।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: जो दिन अज है सदा ए नहीं रहना, दिना विच गर्दश है। कबीर नामदेव जी दा शायद कबीर जी दा एक शब्द है नामदेव जी दा, कबू खीर खांड घ्यू ना पावे। कदी तुसी देखदे हो परमात्मा इन्ना कोई दिंदा है कि बंदे दा चित नहीं करता। वो खांड नू कबीर साहब नामदेव कहिंदे आ घ्यो नू शक्कर नू जिन्ने कीमती पकवान ने उन्हां नू ठुड्डे मारदा है नहीं। ते महाराज कहिंदे आ कदी परमात्मा दी ए वी समर्था जे एहो जी खेड वरता दिंदा है, बंदा झोली पा के लोकां दबुवें अगे खलो के रोटियां मंगदा है कि मैनू रोटी मिल जाए। कमाल दी गल, कईआं नू रोटी नहीं मिलदी, वो ठुड्डे मार दिंदे ने। ते ओ विचारे जेड़े कदी खंड घ्यो नू धक्के मारदे सन, पैरां दे ठुड्डे मारदे सन, अज कूड़े दे ढेर ते बैठे होए, जिन्हां ने लोकां ने रात खाना खा के सटिया है ओहदे विचों चुन चुन के दाने खाई जांदे आ। दिल्ली आपां कई वारी देखिया जी, जिथे मैरिज पैलेस ने ना जी, जदों रात नू विआह हो जांदे ने सवेरे सब कुछ छड दिंदे आ, उत्थे निक्के निक्के बच्चे नगन अपने हथां नाल जूठ विचों दाने चुंदे ने। खैर तां वी बंदे ना, मेरी बेनती उस परमात्मा दी खेड दा कोई पता नहीं। गुरु ने शब्द वरत्या कि तू घबरा ना, तेरे अंदर दी पीड़ा तेरे अंदर दी बिरथा सुनेगा, ओ सुनेगा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। बेनती असीं पहला सिर्फ समर्थ शब्द लिया है, हजूर दा वचन है कबू खीर खांड घ्यू ना भावे, कबू घर घर टूक मंगावे, कबू कूरन चने बिनावे, बिना चूना कदी कूड़े तो छोलियां दे दाने पे इकट्ठा करदा है। महाराज कहिंदे कबू कूरन चने बिनावे, कबू तुरे तुरंग नचावे, कदी कीमती अरबी घोड़ियां नूं नचांदा है, ते कदी इहो जिहे दिन आ जांदे ने पैरां च पाण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं हुंदी। कबू तुरे तुरंग नचावे, कबू पाए पनियो ना पावे। महाराज कहिंदे कबू काट सफेदी सवावे, कदी रोज बिस्तरा बदलिया जांदा है। कई वारी केवल कख लैके कबू भूम प्यार ना पावे, पराली चुकी फिरदा है कि दुकान दा शटर बंद हो जाएगा, इहदे बूहे अगे मैं पराली विछा के पै जांगा, की उहदी समर्था नहीं। चलो आपां इस पक्ष तों नहीं लैणा भी इह सोचिए भी आह कुछ जो कह रहे हां भी नैगेटिव अप्रोच नहीं, दूजे पासे होर भी समर्थ है, रुलदियां ते बख्शिश भी करदा है। रविदास साहब ते कृपा हुई। मैं एक बार अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी ने मान अपमान दी अवस्था नूं बराबर किया है, पर जिथे लोड़ पई उथे भगतां ने हाथ जोड़ के कहा इज्जत जरूर बख्शी। तुसी देखो एक पाठ कर दियो, मान मांगू तान मांगू तन लक्ष्मी सुख दे। हुण जिन्हां नूं जिवें हुण भाई साहब शब्द पढ़िया, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, गुरु रामदास जी दा शब्द। हुण इस शब्द विच दो गल्लां ने, आम बंदे नूं मान मिलदा अहंकार विच कहिंदा अपनियां कमाईयां नाल इज्जतां बणाईयां ने, सुणी दे असां कमाईयां कीतियां इन्नी घालना काली तां इज्जतां बणियां, दुआई रब दी बिलकुल झूठ जे। जदों बंदगी करन वाले नूं इज्जत मिलदी है ओह कहिंदा मैं इहदे लायक नहीं सां, जिथे तू मैनूं पहुंचा दिता है तेरी कृपा है, ओह कदी नहीं कहिंदा मेरी कालना। हुण महाराज ने इत्थे कहा जो खमरी बिद होती मेरे सतगुरा, इसे तरह एक वचन कह महाराज सच्चे पातशाह दा, रविदास साहब दा शब्द। तुहानूं सब नूं शब्द चेते वे जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ, ओह शब्द कह ऐसी लाल अर्थां दी लोड़ नहीं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन खरा है, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र तर है, जाकी छोत जगत को जिदे परछावे तो लोग डरदे ने भी ए शूद्र है, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही डर है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। अगे समर्था है ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸਹਿਮ ਤਰੈ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸਹਿਮ ਤਰੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਮੈ ਸਰੈ ਦਾ ਅਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਾਤ ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: 1550 KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib Scott Road Surrey.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington.
2: Asa vich at dukh ghana man mukh chit laaya gurumukh bhay niras sukh phal paaya. प्राचीन ऋषि मुनिया ने निराश होने का उदास होने का एक जो ढंग कढ़िया सी भी उजाड़ दे चले जाओ बयाबान जंगल दे चले जाओ ते उत्थे रहिंदिआं मन निराश होके उदास हो जाएगा. इस नाल गुरु नानक देव जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सहमत नहीं, इहदे नाल भगत कबीर भी सहमत ने. धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने रे मन ऐसो कर सन्यासा मन से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा. उजाड़ दे च जान दी की लोड़े सदन नो उजाड़ समझ. सदन कहंदे ने घर नो. बन से सदन बन जैसा ही सदन नो समझ. घर नूं ही उजाड़ समझ ले की है तेरे घर दे. सिर्फ घर नूं ही उजाड़ ना, बन से सदन सबै कर समझो. घर दे च जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझ ले. बड़े कठोर जिहा बचन लगन गए पर मैं अर्ज करा सिर्फ एक मनुख नूं 15 दिन लई अपने घर दे च हाउस अरेस्ट कर लिया जाए भी तू नहीं जा सकता बाहर किधर है. यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा. घर दियां दीवारां खाण नूं पैणगियां. बन से सदन सबै कर समझो मन ही माए उदासा. गुरु अर्जन देव जी ते कहिंदे ने घर दी गल छड़ सारा शहर ही उजाड़ है. महाभयान उद्यान नगर कर मानिया. कहिंदा बहुत वड्डा शहर महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़. मनुख ते मनुख नालों टुटिया है. किसे दा किसे नाल कोई मेल नहीं, किसे दा किसे नाल कोई संबंध नहीं, किसे दा किसे नाल कोई जोड़ नहीं. इस नूं तो वड्डा शहर पिया कहिंदा. गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़. जैसे किसे नूं इस गल दी समझ आ जांदी है सब कुछ तो निराश होंदा है. हुण मैं अर्ज करा तीन साधन विद्वान मनदे ने तीन कारण टोटली निराश होण दे उदास होण दे. प्रथम बहुत गहरा सतसंगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे. जो गहरा सुनदा नहीं उहदी समझ उच्ची भी नहीं हो सकदी. जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाना है उन्हूं अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां. जो दरख्त गहरा नहीं जा सकदा यकीन जानो दरख्त उपर भी नहीं उठ सकदा. जो गहरा सरोता नहीं उहदी समझ भी उच्ची नहीं होवेगी, कतई नहीं उच्ची. बोल उच्चे किस दे होणगे, समझ उच्ची किस दी होवेगी जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होवेगी, बहुत गहराई नाल सुनदा होवेगा. अगर गहराई नाल सुनदा है तो फिर गुरु दा शब्द चोट कर जाएगा. एक दिन दा कीता होया जपजी साहब दा जप इन्हों उदास कर देगा, निराश कर देगा. एक दिन दी जपी हुई सुखमनी इन्हों निराश कर देगी, उदास कर देगी. क्यों? शब्द तीर दी तरह लगेगा. अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु वचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया. कल इस पीर दा मैं जिक्र कीता सी. भगत कबीर जिस ढंग नाल इस नूं बयान करदे ने ए भी सुन लो. कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण. सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लगे, तीर ऐसा लगे, शब्द मन नु छोएगा, मन नु चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नु चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहे गुरु वाहे गुरु, ये वक्ता बने, मन स्रोता बने। पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन दी सुनन दी आदत ही नहीं, कि जद सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग देच बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे महाराज कहिंदे ने, दोहरा दें, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहिंदे ने, गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलदा, कौड़ा नहीं बोलदा, फिका नहीं बोलदा, व्यर्थ नहीं बोलदा, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनो भी बयान नहीं कर सकदा, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नो भी मैं बयान नहीं कर सकदा, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे ते शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे। उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगो मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महा रस है। कबीर कहिंदे ने, मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बारों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बारों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू जकात देंदा है, रमजान दे महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तोरा मन नादानम के यजदा शनास, श्री मुखवाक पातशाही दसवें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू रामन नदानम के यजदा शनास, बराम इज्जत ओका रहा दिल खराश। तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं आउंदा। तू ते कदम कदम दे उते दिल तोड़े ने, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदा हने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां, जो जबान दे चे ओही दिल दे चे, जो दिल दे चे ओही जबान दे चे। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है। हुण मैं अर्ज करा चलाक मनुख हो सकदा है संसार दे च बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे लेकिन धर्म दी दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म दी दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकदा है संसार दे च पछड़ जाए, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भगत कबीर कहंदे ने चतराई ना चतर भुज पाई, चतराइयां नाल नहीं मिलना, चलाकियां नाल नहीं मिलना। चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो सें लाइए, कहित कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलता है। बावरा भोला कबीर कहंदे ने ऐसा शब्द दा तीर लगे है, भोला हो गया अंदरों बारों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदा है सद जाओ फिदाए आ के जबानश दिलश यकेस्त। हजारा जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, जेदी जबान ते दिल एक है। जो कहंदा है ओही दिल दे च है, और जो दिल दे च है ओही कहंदा है। जो बाहरों है ओही अंदरों है, जो अंदरों है ओही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने, ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते नूं नहीं कहिंदे भई ऐ कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ऐ गऊ तू गऊ बन जा, ऐ शेर तू शेर बन जा, ऐ खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते हैं नहीं खोते। पर रोज कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, ऐ इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रही है, शेर शेर की तरह जी रही है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा है। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहंदे ने भोला हो गया अंदरों बारों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन्न दे च अंदर जाने ही नहीं देंदा। देखो कोई साडे घर दे च कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकदे हां। पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है, नहीं फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहंदे ने मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं, गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान, इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान कीता, ध्यान नाल सुनना। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टूट गए ने, एदी भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल चल चल चल, हर वक्त ही चलता है, तन बैठा है ता भी मन चलता ही रहिंदा है, चंचल है। चल चल चलदा चलदा चलदा, रुकदा ही नहीं, कदे टिकदा ही नहीं। स्वामी रामानंद बसंत राग दा शब्द कहिंदे ने मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो, यकीन जानो इन्हां नु मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे। पहले कितों एकागर हो जाएगा? जी मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮਹਿਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਰ ਸੇ ਅਬ ਉੱਠ ਕਰ ਕਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਰ ਸੇ ਅਬ ਉੱਠ ਕਰ ਕਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਲ ਮੇ ਮਖਮੂਰ ਵੋ ਰਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈਏ ਜਿਉਂ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ, ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਲ ਮਖਸੂਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਲ ਮਖਸੂਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ ਨਗਮਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਪੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਦਿਲ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਦਾ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਦਿਲ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ

बहुत बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया। बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है। बड़े पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे श्रोता होवे। दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा संसार तो कोई दुख बहुत बड़े रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनु इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनु शब्द ने चोट कीती होवे। दूसरा ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं गुस्ताखी माफ कि इनु अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा अजे संसार तो भी इसनु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं ते मनुख उदास हो जाता है निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध में कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते आवन जान एक खेल बनाया, अग्या कारी के नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कि लहर बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने, संसार बन रहा है मिट रहा है, मनुख जम रहे ने मर रहे ने, जीव जम रहे ने मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नु कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया शामी खा लिया फिर सौ गया फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं, सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा ने सिंघासन जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहिंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहिंदे ने, ऐ छोटा तख्त इनू मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नू ए मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उहनां नू मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ़्ज़ है शुद्ध मसनद, ए मसनद है जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है। इनू फारसी दे च औरंग कहिंदे ने, वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पाके ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयून

0: दिन से। शायद आपने पता होवे आद काल तो कवि लोग गुणी लोग दार्शनिक फिलोसफर राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहते ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी, जोधा बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन से, यह राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलां नूं देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई बेगम से अकबर दे इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम, वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया, कल गुरुपुरब तुसी मनाना। इसने ही तरह तरह के तसीहे ढाए, इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला से जोधा बाई का लड़का से, अकबर का लड़का से, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां दा लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तखत नूं वड्डा तखत, जेब कहिंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत जफरनामे दे राही लिखदे ने औरंगजेब नूं, ना जेबन तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, ऐ मुइनुद्दीन ए नाम तेनू शोभा नहीं देंदा, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त ते बैठदा तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी मां, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी बसिद को सफा, न जेबत तो रा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, महा फरेबी है तो झूठा है चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिक में दिगर दर दहाने दिगर, तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है, तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए जुर्रत उसनों जो है ऐसा है। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्हों मसनद कहते हैं, पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हों की पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई, संगत ने मान सम्मान इतना दिता, इन्हों को हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद दा ते मतलब है जिन्हों तखत मिले है, लेकिन सिख जगत दे च अज गाल बन गई, किसे नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जांदा है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद दा मतलब है छोटा तखत, जिससे बैठे हैं ये छोटा तखत। गुरु अमरदास जी महाराज ने तखत प्रचारकां दे लई बनवाए सन, बे संगत उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनान, ताकि संगतां नूं दिखाई देण ते संघ नूं इह देख सकन, संबोधन कर सकन ते विचार दा ज्ञान दा गुरबाणी दा सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गालिब कहिंदा एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। ये औरंग ये बादशाह दा तख्त, बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हाथ रख देंदे सन ओ तंदुरुस्त हो जांदा सी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
4: ਹਾਂਜੀ,
3: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
4: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਲੂ

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: जे सब्जी भले खाना है, रोटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: टेस्टी जी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: 1746 सिख शहीद हुंदा रहा, 1846 सिख शहीद हुंदा रहा, 1946 सिख शहीद होया, अज फिर सारी कौम शहीद हो रही है। ये अपना काम केवल शहीद

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण @604581190।

मंदिर दे दरबार बंद करो, भगवान नहीं आना चाहिदा। गुरु तेग बहादुर साहब ले दरवाजे बंद कर दिते। इतिहास है सतगुर वापस जान लगे इते अमृतसर दियां मातावां ने रोक लिया, नहीं तो जान लगे सन, उन्होंने नहीं जान दिता। तो पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा है, सारे अमृतसरियां लई नहीं ने, मैं अर्ज करें भाई संतोख सिंह जी दे बोल, ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। ए जो मसंद ने, ए जो पुजारी तबका है, ए जो धार्मिक तबका है, ये तो त्रिशना दे सड़े हुए ने, ये तो अंधेरे दे जीण वाले ने। माइया रब रजाइया, एक कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है सतगुरु दे मुखार बिन तो बोल निकले, मातावां ने रोक लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, नहीं तो मसंदा ने ते बाहर कढ दिता सी, चारों पासे मसंदा ने अज पहरा ला दिता, संगत गुरु तक ना पहुंचे। अन्न धन शस्त्र सब कुछ लुट लिया, पृथ्वी चंद ने माहौल तो ठीक नहीं है, जहांगीर भी वैरी है। पृथ्वी चंद जो कुछ कर रहा सी जहांगीर दी ताकत भी नाल सी, क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता सी गुरु घर दी शक्ति वध जाए, ताकत वध जाए। और जो मैं तबलीग दा काम करना चाहना उहदे च कोई रुकावट खड़ी होवे वो नहीं चाहता सी। उहनूं बहुत वड्डा दुख होया सी जद उहनूं पता चलिया महान सूफी संत साईं मियां मीर उन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमों से रखे है। ये जहांगीर की सोचनी पै गई भी इस तरह के पुरश के होंद मैं इस्लाम किस तरह फैलावांगा, मियां मीर जैसे झुक गए उत्थे, ये मैं हटाना। पृथ्वी चंद नूं हथ च कीता, पृथ्वी चंद पहले वैरी सी, उन्हूं शाही घराने की ताकत मिल गई। आदकाल तो गुरु घर नूं इस ढंग नाल कमजोर किया जाता रहा। राम राय नूं औरंगजेब ने खड़ा करके धन गुरु हरिकृष्ण जी महाराज की गुरियाई नूं कमजोर करने की कोशिश की गई। बगौर मुताला करना सब औरंगजेब की शह है, वक्त दी हुकूमत नहीं चाहती आदियां कोई साड़ी बराबरी ते आ जाए, मुकाबले ते आ जाए। कहिंदे ने संगतां विचों जो 10-20 बंदे अंदर रह गए सन, अज दिन भर लंगर नहीं बनया, पैरा रहा, कोई रसत पानी आई नहीं, जिहड़ी हैगी सी सब लुट के लै गया पृथ्वी चंद, अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा जी ने घर टटोलना शुरू किया, मता कुछ लभे, दो प्रशादे ते बनन धन गुरु अर्जन ले देव जी ले अज दिन भर दा, कुछ भी अन्न पानी नहीं, कुछ भी अन्न पानी नहीं। ये महाराज दे सिर्फ बोल ही नहीं, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, एक मिट्टी दे भांडे विच थोड़ा जिहा किधरे बेसन पिया सी, इहदे दो प्रशादे बने मिट्टी दे तवे ते, और मिट्टी दे ठीकरे दे ची इह दो प्रशादे सतगुरां दे अगों रखे। भांडे भी कोई नहीं सन, लेकिन ये दो प्रशादे अगों रखदियां सार चीख निकल गई जगत माता गंगा दे, अपने हंजुआ नूं नहीं रोक सकियां, जज्बात दे चा गईयां। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा अमृतमई बोल, अमर कलाम जो आप दे कंठ तो प्रगट होया है, रूखो भोजन कानड़े राग दे अंदर है। कदी कदी भाई कल्याण सिंह पड़ताल लगांदे ने इस शब्द की, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख ब्याथ। ए सखी तू रो ना, पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया, वस्त्र लुट के लै गया, शस्त्र लुट के लै गया,

0: जी सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: तेजे सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
5: हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
6: है। सदमुसिया बेबी, या
7: मर्सी।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कोमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहिब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां वंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी

0: एक मन हो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, तन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ा बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़िया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने आ, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती होई ओ दात है जिहड़ी वक् वक् जीवां विच परमात्मा ने वक् वक् तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਆਗਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਈਲਸ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਖੂਨ ਸੁਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਨਾਲ चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं। मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक हो के ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम की दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं वो खिच पानी विच उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। वह आसमान दे उते, वह धरती दे उते, जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पाण लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जिहड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचण लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच भी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वह सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी है पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, न्यो कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है, पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ, ਨੇਹ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਤਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਖਾਏ ਵੀ, ਪੀਏ ਵੀ, ਬੋਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੈ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਬਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਐ ਮਿਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਕੱਟਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾਂ, ਵਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੇ ਚੁਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरां जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए साई नू ने करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं ओ ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान ओना नू जबानी कंठ हो गई है। अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर ओ कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचो भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष ओ आप शक्कर गंज है शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे जोबन चला जाए प्रीत तो बिना जवानी चली जाए प्यार तो बिना जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है बेहोश होके जमीन ते गिर गए सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है कहन लगे नमाज अदा हो गई मेरा नेम निभ गया बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी कराओ मेरा वजू मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना मैं नमाज अदा करनी चाहना वा। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी के बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है तन नू थोड़ा बहुता खेद है हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्हां ने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा रब दी याद भी जुड़ा। ओ महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं प्रेम ता एक अंदर दी खिच है प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई कैसी भगती कीती केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरना विच ओना ने फिदा कर दिता ओना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होने वालियां कुछ उदाहरणा नू अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सचे पातशाह ए ता आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं पर ए दसो प्रीत कैसी करिए प्यार की हो जा करिए कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहने कमल का फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझ लिखा है अपनी जिंदगी दे टुकान वास्ते, ना के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट कर ले। कथा का मतलब है कि विचार के सुन के पढ़ के को के उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल का फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरां पैदा हुईयां, ते जदो पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़ कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी ओनू लहर धक्का मार के खब्बे कदी सजे, ओनू सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं धक्कदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करीदी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं दिंदा हुंदा। ते सच जाण्यो जिहड़ा बंदा मित्रता करदिआं होइआं वी उलामे गिले शिकवे करदा है उह कदी प्रेमी नहीं हो सकदा, उह कदी प्यारा नहीं हो सकदा। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं ते बाणी विच गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ऐ कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना है, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरां मार दे, छड परा इहो जिहा पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार ना एदे तो निर्लेप दा ना सुगंधी ना रूप ते ना भवरे तां की होया। जे पानी ठोकरा मारदा आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ए गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ऐ मनुख प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचो निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मां दी दूरी होने दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना है। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी ते यक लख परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी ता होवे जेड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी हरशो प्रीत कर। रे मन दा अर्थ अपने मन नू संबोधन कीता, अपने मन नू मुखातब कीता। कहन लगे रे मन ऐसी हरशो प्रीत कर जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है। लहरी नाल पछाड़िया जे लहरा ओनू उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने पी विगसै असने ओ लहरां दियां ठोकरां विच वी खसी जांदा है। ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਠੋਕਰਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਟਾ ਆ ਜਾਏ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਕੈਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਘਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਅਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੇਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਪੀਆ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਪਰ ਚਾਤਰਕ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਤਰਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਜ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਕਨਕ ਮਨ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਚੱਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਦ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਚ ਕਿਚ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਕਨਕ ਮਨ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਚ ਕਿਚ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਨਨ ਸ਼ਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਦਨ ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਪਾਹੀ। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती, मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती। ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा, रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर, जैसी चात्रक में सार पार
1: थाल हरि आवले। सब तो वड्डी अकल चाही दिए प्रभु नु समझन ले, गुरु नु समझन ले। इस चक्कर च ना पैना, मंदिर विच भीड़ है, गुरुद्वारे विच भीड़ है, मस्जिदां विच भीड़ है, बड़ा धार्मिक जगत है, गुस्ताखी माफ, धार्मिक जगत है, धर्म दी समझ रखे बिना, धर्म दे बोध तो बिना धार्मिक इकट्ठ, धर्म दी समझ तो बिना धार्मिक इकट्ठ, समझ तो बिना, बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ, धर्म दी समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे, मां है, पिता है, कि चाचा है, ताया है, पुत्र है, भैन है, भरा है, ये मामे ने मासियां ने, इस दी समझ ही ना होवे। बहुत वड्डा समाज दा इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे, ओ इकट्ठ सारे दा सारा बेमैन है। बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, धर्म की समझ ना हो, धर्म का बोध ना हो, और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है। जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने, इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने, नहीं जितनिया मस्जिदा ने, जितने मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, जितने जैन मंदिर ने, जितने बौद्ध मठ ने, जितने सनातन मंदिर ने, जितने चर्च ने, जितने सिनागॉग ने, इन्ने धार्मिक मंदिर, और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर, हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, होंदा ते है चंदन दा बूटा, पर हर जगह नहीं होंदा, हर जंगल दे च नहीं होंदा। होंदा ते है केसर, पर हर जगह नहीं होंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च होंदा है, कश्मीर दे च होंदा है, एक अद मुलक होर, बाकी किधरे नहीं होंदा। बड़ा बोके वेख्या गया, नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बोके देखा गया, नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देखा गया, नहीं होया। बीच के देखा गया, नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते, कश्मीर नू जिहड़ी सड़क जांदी है, उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश, उत्थे आउंदा है, और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत, होंदे ते ने धार्मिक मनुख, गुस्ताखी माफ, हर शहर दे च नहीं होंदे। होंदा ते है केसर, हर जगह नहीं होंदा। होंदा ते है चंदन, हर जगह नहीं होंदा। होंदे ते ने हीरे, पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं होंदे, नहीं होंदे। होंदे ते ने संत, हर शहर दे च नहीं होंदे। हर शहर दे इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे धनवान होंदे ने, कारोबारी होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, हर शहर दे दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने, हर शहर दे संत नहीं होंदा, भगत नहीं होंदा। हर शहर दे रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना, हर शहर दे इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, दार्शनिक फिलासफर होंदे ने, हर शहर दे कलाकार होंदे ने, हर शहर दे राजनीतिक होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, चोटी दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुरपुर माए एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्मज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिदी है धर्म नु समझण वास्ते। बड़ी मशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक। जिन्ने नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होण गए, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट होंदा है, बहुत घट होंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा। हुण होर भी मैनूं कहण लेना बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं होंदे, नहीं होंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है। ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना, बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे चना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे, तेरे जिन्ना मिलिया तेरी याद चल पाए, जिन्ना दे संदड़िया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है, सेवा नाल बनते ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है, मेहनत नाल धन कमाया धन दान दे दिता सेवा है। दान सिमरन नहीं है और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होंदा, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माँ है, बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है। बेईमानी करके धन कमाया है, दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहिंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए, दानी पाप करके धन इकट्ठा करदा है फिर दान लेंदा है, कहिंदा मैं धार्मिक कर्म कीता हद हो गई, जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालो दित्ता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया। गुरबाणी बहुत गहराई जांदी, इतना ना समझ लेना। आ मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलदी, एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा है। दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है। कुछ गल्ला सामने आईया ने मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पिया करूंगा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे ना ही मोया साथ ना जाए, बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन कट्ठा ही नहीं होंदा। फिर पाप का बोझ लाण वास्ते दान, महाराज कहंदे ने किस तरह हो सकदा जिहड़ा कट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमाए, खैर धार्मिक इकट्ठ धार्मिक सूझ बूझ नू पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना हुंदा, दरवाजा पहले हुंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है, इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनु, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब दा अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे चे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी दा अपना नाम भी है। ए गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकदे हां दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है भी, ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां ये ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम एको हो जाता है, कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा ना दजला ना फिरात ना नील ना थैं। जद भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना ना वो हिंदू है ना सिख है ना मुस्लिम है ना ईसाई है ना जैनी है ना बौद्धी है ना यहूदी है ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है यहूदी है हिंदू है इतने चिर तक नदी ते है सागर नहीं है, नहीं है समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंगे ना कट्टर बड़े होंगे और कमाल दी गल अकल तो बिना अकल दा दावा अकल नू ते छिके ते टंगे होया अकलमंद होने दा दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है किसी एक कद नू अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे फिर कटो उसके बंद बंद बिठाओ उसनू तत्ती तवी ते कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नू जहर दा प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए एक नू तुसी सूली ते टंगे एक नू जहर दे के मार रहे एक दे दन तुसी तोड़ दिते एक नू तत्ती तवी ते बिठाया एक नू चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्हां दे फरजंद उन्हां दे बच्चियां नू पोतरियां नू तुसी दीवार दे चिणदे पए किसी दे बंद बंद कट रहे हो किसी नू उबल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो इन्हां ने चोरी कीती है यारी कीती है बलात्कार कीता किधरे कतल कीता है एक भी जुर्म नहीं इन्हां दा एक कसूर है कि ए बेकसूर है। कसूर वारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है। गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है। मूर्खां दे कठ दे च इतना स्याणा हो जाना भी किसी वद हालत च मूर्खता हो जाती है। देखो सारा बनारस कह रहे हैं कबीर पागल है लोग कहें कबीर बौराना इतने बौरा है पागल है। हुण बनारस वासियां नू कौन दसे सारे बनारस दे च इक्को ही ते स्याणा है बाकी दे सब पागलां दी भीड़ है। हुण एक स्याणा होवे ते भीड़ पागलां दी होवे ते दुनिया ते बहु गिणती प्रभाव ते बहु गिणती दा घट गिणती दा ते है। इस वास्ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने 1934 दे इस दे उत्ते तनज भी कर दिती सी जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जमहूरियत डेमोक्रेसी लोकतंत्र जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। कहते जमहूरियत की है डेमोक्रेसी की है गिनते अगर खोते 900 ने ते घोड़े सिर्फ 100 ने तो खोते जित जाएंगे घोड़े हार जाएंगे। गिद्दड़ 900 ने ते शेर सिर्फ 100 ने शेर हार जाएंगे गिद्दड़ जित जाएंगे। गौवां सिर्फ 100 ने ते सूअर 900 ने गुस्ताखी माफे सूअर जित जाएंगे गौवां हार जाएंगे। मैनू कहण दोगे बहुत सारे मुल्कां दे सूअर ही जित जांदे गौआं ते हार जांदियां थोड़ियां शेर ते हार जांदे ने थोड़े। जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो ला नहीं करते। फिर ये महान शायर जिसने देश दी वंड तो पहले कौमी तराना लिखिया सी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। इन्हें एक होर कीमती गल भी आखी है जलाले पातशाही हो शख्सी हकूमत किंगडम जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो या डेमोक्रेसी का तमाशा हो गया या जमहूरियत का तमाशा।

नमो शांत रूप है, नमस्कार है तेनो ऐ शांति दे स्वरूप करता, पर नमस्कार है तेनो ऐ कलेश दे करता। बहुत वट्टी गल, करता ही करता है, करता ही करता है, बाकी दे सब कुछ करित असि हां ही नहीं, तो ही तो है, तो ही नो। इस तरह दे बोध दे आउंदे आ मनुख समाधि लीन हो जांदा। पशु नूं भी कोई बोध नहीं कि मैं हां, ए भी मैं अर्ज करदे आ, पशु अचेत है बिल्कुल। इस वास्ते पशुआं दी दुनिया सुख है, कोई पशु बोर नहीं आउंदा, कोई पशु बेचैन नहीं आउंदा, कोई पशु व्याकुल नहीं आउंदा, कोई पशु पागल नहीं आउंदा। हां ओ पशु जरूर पागल हो जांदे ने जिन्हां विचारियां नूं पागल मनुखां नाल रहना पैंदा, ओ पागल हो जांदे, उंज नहीं आउंदा। मनुख जिन्हां पशुआं दी प्राकृतिक जिंदगी विच फर्क पा देंदे ने, उन्हां दी जीवन दी आजादी खो लैंदे ने, क्योंकि मनुख दे कोल ताकत है, ओ पशु पागल हो सकदा, बेचैन हो सकदा, वरना पशु बेचैन नहीं हो सकता। कदी बगौर मुताला करके देखो, पंछियां नो शाम नो घर आ रहे हैं, चह चहांदे हुए, गीत गांदे हुए। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए, चह चहांदियां चह चहांदियां सौ गए। अमृत वेला हो गया, रात दा चौथा पैर आरंभ हो गया, चह चहांदियां चह चहांदियां गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने। चानना हो गया, रोशनी हो गई है, अपने आलणियां नूं त्याग के गीत गांदियां या रिजक दी तलाश दे चल पए। दिन भर रिजक दी तलाश कीती है, सूरज गरूब आउण लगा है, वापस गीत गांदियां या वापस आ रहे हैं। गीत गांदियां गांदियां रात दा पहला पैर खत्म होंदे आ, सौ जांदे ने, रात दा चौथा पैर आरंभ होंदे आ, जग पैंदे ने। प्राचीन ऋषि मुनि ते कहंदे सन, जदों पशु सौंदे ने सो जाना चाहिदा, जद पंछी सौंदे ने सो जाना चाहिदा, और जद पंछी जागदे ने जग पैना चाहिदा। यही प्राकृतिक है। मनुख ने अपना सोना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, जागना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, खाना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, और ये सब कुछ क्यों होया है? खुद नो करता मन के, मैं करता, तो एक परमात्मा करता, एक तू करता, तुम दो करते हैं दिच किवें बनेगी? परमात्मा ते करता है, ते तेरा करता होना अचेतपणे ते खड़ा है, अज्ञानता ते खड़ा है। तू करता नहीं है, तू स्वयं करता है, तू खुद करता है। ऐसा की कुछ है जो तू बनाया? अगर हथा नाल बनाया है तो हथ कृत ने परमात्मा दी। अगर दिमाग नाल तू सोचे है तो दिमाग कृत है परमात्मा दी। इत्थे पुछो उस तों जिसका कदी कोई एक हथ नाकारा हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, कोई मिलता है बाजार दे, लभदा है, और उस दिन उसनों पता चलता है कि करते दी ये कृत एक हथ दी किन्नी कीमत है, किन्नी गल है, किन्नी महानता है। इन्हां हथां नूं मैं कदी कोई महानता ना दिती, उस करते दी इतनी वड्डी कृत मेरे हथ, उस करते दी इतनी वड्डी कृत ए जवान ए दिमाग। जैसे जैसे मनुख बार बार ए ख्याल करदा जाए, तुम करता है, तुम करता है, तुम करता सच्यार मेडा साई, तुम करता है, तू ही करता है, कहिंदे ने मनुख दा अहंकार मिट जांदा। और जितने मिकदार दे च अहंकार मिटदा जा रहा है, उतने मिकदार दे च निरंकार प्रगट होंदा जा रहा है। और जिस दिन करतापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस दिन पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म गया नहीं, उस दिन चानना ही चानना हो गया, उस दिन परमात्मा पूर्ण प्रगट हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गोष्ठी लिखी है, बड़ी सुंदर, आपका एक बड़ा कीमती वाक गुरु नानक देव जी महाराज का। उस वाक दे च कहने ने है,

0: ये करते तो ही है, लेकिन कुछ कृत मेरी भी है, मैं भी करता। मनुख दी तरफों बोलते ने और पंक्तियां गुरु नानक देव जी दियां ने है। इत आम जगत जिस ढंग नाल सोचता है बस उसकी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे ने बड़ी सोहनी। साहिब कहिंदे ने तूं करता है मैं करता। तो फिर प्रश्न होया सब कुछ दा करता ते ओ ही है, तो फिर दसो मनुख दी कृत की है, की है ऐसा जो मनुख दी कृत होवे। महाराज इस तरह बयान करदे ने, दात जोत सब सूरत तेरी, इस शक्ल सूरत तेरी है, इस दिच मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तो दिते वैसे ने, जैसी आवाज तो दिती वैसी है, जैसे अंगूठे की छाप तो दिती वैसी है, और इस दिच प्राणा दी हरकत ते जोत चेतना सब तेरी। दात जोत सब सूरत तेरी, ए नैन नक्श सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ए हाथ पैर मोह मथा सब तेरी कृत है, दात जोत सब सूरत तेरी। जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है, सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया, फिर मनुख दा की रह गया। साहिब कहन है ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है, तो फिर की है। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप औमे मेरी, ए अहंकार मेरा है। भावे सब कुछ तेरा है पर एदे उत्ते मोर मैं ला दिती है, मेरा मेरा मेरा मेरा तन मेरा धन मेरा दिमाग मेरी इज्जत मेरी मान मर्यादा मेरी शक्ति मेरी कुल मेरी प्रभुता। तो महाराज कहने ते मेरी है, अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ये अहंकार दा कृत करता मैं हां, ये मैं है मेरी कृत है, ये अहंकार मेरा है तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बढ़ा के भी चुप है, खामोश है। तू तो किधरे भी नहीं कहता है सागर मैं बनाया, ये सूरज मैं बनाया, ये धरती मैं बनाई, तू तो किधरे भी नहीं कहता। एक गल वखरी है कि खुदा नो भी बुलाया है। एक थां थे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, उसने भी खुदा ते मनुख दी गोष्ठी लिख दी। गुरु नानक दे कहण दा अपना आलमाना ढंग, वो शायर है उस दे कहण दा अपना ढंग। साहिब कहिंदे ने दात जोत सब सूरत तेरी, तमाम शकल सूरत और मेरी शकल सूरत सब तेरी, ए नैन नक्श तेरे, ए प्राणा दी हरकत तेरी, ए आत्मा तेरी, पर बहुत सियाणप औमे मेरी, चतराई ते अहंकार मेरा तेरा नहीं। पंडित दयाराम होए ने गुजरात दे, गुजराती संत होए ने, गुजराती भगत काठियावाड़ दे इलाके च। एक कहिंदे ने हे प्रभु तेरे कदमां दे च कुछ अर्पण करन नूं जी करदा है, ते अर्पण मैं ओ करना चाहना जो मेरा होवे, कि तेरी चीज तेरे अगो रख दे। जैसे रविदास कहिंदे ने तेरा दिया तुझे क्या अर्पां, नाम तेरा तोनी चवर डोलारे, तू दिता ते तेरे अगो रखा कुछ शोभा नहीं देंदा, क्यों गल फबदी नहीं। तो दया राम कहिंदे ने मैं ओ तेरे कदमां दे च रखना चाहना जो मेरा होवे, कि तू मैनू दिता ते मैं तेरे अगो रख दिया, इत्थे कुछ भी नहीं। मैं वो रखना चाहना जो मेरा है, पर मेरी एक बेनती है तू कबूल कर, परवाह न करे, क्योंकि मेरा है, पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें भी अपने ढंग नाल गुजराती भाषा दे गोष्ठी लिखी है। तो प्रभु बोले, अच्छा ठीक है, की है तेरा बैठ कर, की है तेरा। ये भगत के कहंदा है मेरा बस यही है, ये बैठ करना चाहना मेरा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है, बस ये भाव बैठ करना चाहना, ताकि तू पूर्ण तौर पर प्रकट हो, ताकि मैं तेरी झलक देख सका। बस मैं खुद ही दीवार हूं और कुछ नहीं, मैं ही दीवार बने आया, और ये दीवार मेरे को गिरदी नहीं। तू कबूल करें तो मैं यही रख दिया तेरे अगो। समुचे जगत च अहंकार का ही संघर्ष है। राजनीतिक दुनिया दे च अहंकार, धार्मिक दुनिया दे च अहंकार, समाजिक दुनिया दे च अहंकार। इस वास्ते परिवार दे संघर्ष, धार्मिक दुनिया संघर्ष, राजनीति दे संघर्ष, अहंकार। मैं मैं मैं हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुद्ध कवे ना नासी। रविदास कहंदे ने मैं कवि, तो कविता दा करता बन गया, कोई जात दा करता बन गया, कोई कुल दा करता बन गया, कोई ज्ञान दा करता बन गया, कोई सन्यासी सन्यास दा करता बन गया। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, कोई योग दा करता बन गया, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुद्ध कवे ना नासी, कोई दान दा करता बन गया। ते जिस दित्ते हुए दे नाल करतापन जुड़िया होया है, उन्हों दान मनिया ही नहीं गया, वो ते मनुख दे हत्थां च ही है, क्योंकि करतापन ते नाल जुड़ गया, उदा अहंकार ते नाल जुड़िया है। तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तै ज्यों कुन चरे इस नाम। धर्म दी साधना दी सफलता किस तरह मनांगे, जितना मैं मिटदा जाएगा समझ लो सफलता मिलती जा रही है, और जिस दिन टोटल मैं मिट जांदा है तो प्रगट हो जांदा, तो करता तो भया, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तद तो चारों पासे कबीर दी महिमा बड़ी हुई, उपमा बड़ी हुई, इस दे ज्ञान दी, इस दे व्यवहार दी, इस दी जीवन शैली दी। ते कुछ एक ने मूंद ते उपमा की थी, कबीर धन है तो अब दी ज्ञातली अर्ज करा, उपमा करना मनुख दी एक मजबूरी है, निंदा करना मनुख दी एक मजबूरी है। उपमा ए उस दी करदा है जो इसका भविष्य होवे, जो ये होना चाहता है, जो ये बनना चाहता है, वरना उपमा कर नहीं सकता। कोई किसी फिल्म स्टार दी उपमा पिया करदा है, कोई राजनीतिक दी उपमा पिया करदा है, कोई किसी संत महापुरुष दी उपमा पिया करदा है, मनुख ओही कुछ होना चाहता है, वरना उपमा दा कोई मतलब ही नहीं सी। मनुख निंदा कर रहा है, अपने ही माजी दी निंदा कर रहा है, पशु सी पशुआ वाली कृत किधरे प्रगट हो रही है, निंदा पिया करदा है, दरअसल अपने पिछोकड़ नूं ही बंडदा पिया, होर कुछ नहीं। अगर इस तरह देखो या इंज कर लो, ए निंदा कर रहे है अपने माजी दी, ए उपमा कर रहे है अपने मुस्तकबिल दी, ए निंदा कर रहे है अपने अतीत दी, ए उपमा कर रहे है अपने भविष्य दी। लाजमी है, ये हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, वरना मनुख उपमा कर ही नहीं सकता। उपमा लाजमी अगे मनुख दी मंजिल है, मनुख वैसा होना चाहता है, उस वर्गा होना चाहता है, ताई ते जो है उपमा कर रहे है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहने जिस दिन मनुख नु मंजिल लग पई, दो चीजा मिट जांदी, निंदा ते उस तो मिट जांदी, खत्म हो गया अतीत, खत्म हो गया भविष्य, मंजिल ही मिल गई, ठिकाने ही मिल गया। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਗ ਦੇ ਆਗੇ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਉਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਕਿਧਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਨ ਕਬੀਰ ਧਨ ਕਬੀਰ ਧਨ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਪਣ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੀਵੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਨੈਣ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਹੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋਗ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਕਹੇ ਯਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਦਾਤਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਧਰਤੀ ਫਟੇ ਤੇ ਸਮਾਵਾਂ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਸਮਝ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। आखिर मनुखां दी समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते सहस तो नैन नना नैन है तो एक हो, सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी कोई मूर्ति नहीं है। चक्र चैन अर वरन जात अर पात नैन, जे कोई तेरा चक्र चैन नहीं, कोई तेरी मूर्त नहीं। सहस मूरत नना एक तो ही, पर सारिया मूर्तियां तेरिया ने। गुरु नानक देव जी कहते तेरी कोई मूर्ति नहीं, सारिया मूर्तियां तेरिया ने। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिंद, सहस तो गंध इओ चलत मोई। तेरे कोई पैर नहीं, पर सारे पैर तेरे ने। तेरी कोई नक नहीं, गंध गंध सुगंध माणन वाली नासका। तेरी कोई नक नहीं, इस सारिया नासका तेरिया ने और किसतिया। तेरी कोई जबान नहीं, सब जबाना तेरिया। तेरा कोई रूप नहीं, सारे रूप तेरे ने। तेरी कोई अख नहीं, सारिया अखा तेरिया ने। तेरे कोई पैर नहीं, सारे पैर तेरे ने। तेरे कोई हथ नहीं, सारे ही हथ तेरे। रिते पहेली हो गई, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक दी इस गल नूं। निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं, पर सारिया अखा तेरिया ने। तू करता है और ये कृत है, और तू अपने कृत दे बैठा हुआ है। अपने कृत तो वक नहीं है, करता पुरख। पुरख कहिंदे ने पूरे होया, व्यापक। अपने कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखा तेरिया कृत ने तो अख दे तो ही है। नक तेरी कृत है तो नक दे तो ही है। हथ तेरी कृत है तो हथां दे तो ही है। पैर तेरी कृत है तो पैरां दे तो ही है। दिन तेरी कृत है तो दिन दे तो ही है। रात तेरी कृत है तो रात दे तो ही है। सूरज तेरी कृत है तो सूरज दे तो ही है। इसनु इस तरह लेना है। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही। तेरी कोई अख नहीं, सारिया अखा तेरिया ने। तेरी कोई मूर्त नहीं, सारिया मूर्तां जो है तेरिया ने। इत सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा। खुदा ने मनुख नूं आख्या जहां राज यक आब गिल आफरेदम, तो ईरान ता तार जंग आफरेदी। इस तरह के जेडे शायर कवि आंदे ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवें एक छिण वास्ते, एक सैकंड वास्ते। कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं इह झलक मिलदी है, अगे पिछे नहीं आंदे। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़दा नहीं। बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह दे शायर, इस तरह दे कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलदी है, इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरशां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहिंदा है दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बास में गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ऐ प्रभु तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ए कह रहा है भिजी भी ना ते किनारे ते लग जा। ते हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भेजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा मी, बाज मी गोयन के तामन तरम कुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है मैं तेरी कृत ते कृत देश तो बैठा है, हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बास में ही गोयन के दामन तर्मकुन होशियार बास। सूफी संता ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहने ने जहां राज यक आबो गिल आफरी दम तू ईरान ता तार जंग आफरी थी। ऐ मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख देता, किधरे अफगानिस्तान बना देता, ईरान बना देता, तातार बना देता, टर्की तुर्की बना देता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफी दी चाल दे कविता दे। ए तू की कीता, जमीन तू इस तरह वंडी क्यों, तू टुकड़े टुकड़े क्यों कीती। जहां राज यक आबो गिल आफरी दम तू ईरान तातार जंग आफरी थी। मन राज यक फौलाद नाब आफरी तम तू शमशीर तीरो तुफंग आफरी थी। मैं लोहा बनाया, तू बदूका बना लिया, तीर बना ले, तोपा बना लिया, ये तू की कीता। मैं लोहा इस वास्ते ते नहीं बनाया सी, ए तू की कीता। मैं ते तेरी वरतों वास्ते बनाया सी, कोई कारामद चीज जिस नाल कुछ तामीर होवे। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जद कोई मनुख तामीर कर रहा होवे और उस तामीर दे च लीन होवे, जितना लीन होवे उसका अहंकार नहीं होवेगा, उस वक्त रब दे नेड़े आंदा। एक कवि जद कविता दे च लीन होके कविता लिख रहा होंदा, रब दे नेड़े आंदा। एक मुसव्वर जद लीन होके तस्वीर बना रहा होंदा, रब दे नेड़े आंदा। एक संतराश जद लीन होके बुद्ध घड़ रहा होंदा, रब दे नेड़े आंदा। और जद जिस वक्त कुछ मनुख मिटा रहा होंदा, रब तो दूर आंदा। ये भी मर्ज करते हैं, बनाण लगे नेड़े आंदा। मैनू ते गल भुलदी नहीं, इंदौर दे नेड़े एक मंदिर है, उहनू स्वर्ग मंदिर कहिंदे ने। ते उत्थे कोई गालवन 22 साल तो एक मूर्ति बना रहा सी, संगत राज सुन ते वह बन गई है, दूजे मुसव्वर ने बनाई है, दूजे संगत राज ने, वह बेचारा गुजर गया। ते मंदिर दे मुंतजिम उसनू जयपुर तो लिया है और उसनू कहन लगे घट तो घट 2 साल दे चे मूर्ति बना दे, 20 फुट वड्डी मूर्ति, 20 फुट महात्मा बुद्ध। लेकिन 22 साल भी कंप्लीट ना कर सके, मुंह मथा गड़ दिता, हाथ भी महात्मा बुद्ध दे बना दिते, गोड़िया तक बनतर बना दिती, सिर्फ चरण रह गए पैर। और 3-4 साल तो बस सवेरे हथौड़ा छेनी लेके बैठ जांदा सी सोची, ते शाम नू उसे तरह हथौड़े ते छेणे नू रख के अपना विश्राम दे चला जांदा सी। मंदिर दे मुंतजिमा ने सोचे या ते पागल है या ते मुफत दी दिहाड़ी साडे को लेना चाहता। दिहाड़ी ते सी, मुफत दे पैसे इस नू देईए, करदा कुछ भी नहीं। एक दिन किधरे सख्ती नाल मुंतजिम पेश आए मंदिर दे, भी असी तेनू रुखसत करन लगे हां, होर संतराश बुलावांगे जो इन्हां चरणां नू गड़ लवे, पर असी अफसोस नाल पुछना चाहने हैं, इतना सोना तो मुजस्मा बना दिता है, मूर्ति बना दिती है, ते 3-4 साल तो बैठा है, थोड़ा जिहा कम है ये तेरे कोल नहीं हो रहा, जदके तू पहले पहल 2 साल विच बनाउण दा वायदा कीता सी। उहदी अखां भर आईआं, कहिंदा जद मैं हथौड़ा चुकदा छेणा चुकदा सोची पैंदा महात्मा बुद्ध दे चरण गड़ा, ते जिन्हां चरणां दे उत्ते हजारां मनुखां ने रोज मत्था टेकणा है, उह चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आउंदे, मेरी गिरफ्त दे च नहीं आउंदे, मेरी कल्पना दे च नहीं आउंदे, मैं खो जाना, मैं मिट जाना। उन्हें रोंदे हुए गल आखी, खत्म ते हो गया मर गया, दूजे संतराश बुलाए गए, पैर नहीं बना सकया, उस तो बने ही नहीं। और तमाम मंदिर दे मुंतजिम मंदे सन, बनाउण लगया लीन हो जांदा सी, खो जांदा सी, किसे गए भी दुनिया च खो जांदा सी। उहदी चेहरे नूं वेख के, उहदी लीनता नूं वेख के इंज प्रतीत होंदा सी जिवें कोई समाधी लीन योगी है। बनाउण लगया मनुख रब दे नेड़े होंदा, बहुत नेड़े चला जांदा है। अगर वह लीन हो गया ते करतापन उसका खो गया, वह तो रब दे नेड़े हो गया। तो कोई चित्रकारी दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई गीत संगीत दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई किसे अलाप राग दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई उसकी धुन ते उहदे सिमरन दे राही नेड़े हो जांदा है। जद जैसे जैसे उसका अपनापन मिटदा है ते लीन आउंदा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, खुदा ने मनुख नूं आखिया इह तों की कीता, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली, खत्म कर ली, मिटाण ली। चमन आफरीदी निहाले, चमन रा कफस साखती, तायर नगमा जनरा। तू तबर बनाया, मैं चमन बनाए, सोने दरख्त फलदार, पर तू कटण ली कुलाड़े बना ले। तबर आफरीदी निहाले चमन रा कफस साखती, तायर नगमा जनरा। जो इतने सोने सोने राग अलाप देने पंछी, तो उन्हां लई पिंजरे बना दिते। मैं चमन बनाए, तू कुलाड़ा बनाया, मैं लोहा बनाया, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली, मैं जमीन बनाई ते तू ईरान बना लिया, अफगानिस्तान बना लिया, ते तुर्की बना लिया, ये तू की कीता। कहिंदे ने बंदा खुदा दे सामने होया बकौले एक बात, ते बंदा कहन लगा ठीक है तू करता है, ते आपां वी ते करते ही हां ना, जे तू करते पन दा इतना दावा करदा है तो फिर साडा करता पन वी देख, असी वी करते हैं, तू किस चीज दा करता है। कृत मेरी सी, उसे ही कृत नूं तू बिगाड़दा रहा, उना हथां दे नाल जो हथ भी मेरी कृत, उसे दिमाग दे नाल जो दिमाग भी मेरी कृत। ते पता है मनुख सामने होके की कहिंदा, तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, देख मैं करता, तू अंधेरी रात बनाई ते मैं जलदा होया दीवा बनाया, तेरा हनेरा रहने ही नहीं दिता, मैं रात नूं दिन दे च बदल के रख दिता। तू ते रात बनाई सी ना, मैं रात रहन नहीं दिती, मैं अपने घर दे च तेरी रात दा हनेरा नहीं रहन दिता। तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम, तू मिट्टी बनाई सी, मैं प्याले बनाए, सुराइयां बनाईयां, सोने सोने बर्तन बनाए, कोई तू आसमान तो सुट्टे ने, मैं बनाए ने, मेरा करतापन। अगा चल के इकबाल इंज लिखदे ने, बयाबानो गुलजार बाग आफरीदम, खयाबानो कोसार राग आफरीदम। तू उच्चे नीवे पहाड़ बनाए, मैं उन्हां दे खयाबान रस्ते बनाए, तू थोड़ी बनाए न सड़कां, मैं बनाईयां। तू बयाबान जंगल बनाए, बंजर बनाईया जमीना, मैं ले लहांदे चमन बनाए, गुलिस्तां बनाए, तू थोड़ी बनाए। मन आनम के अजसन आई ना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना ए साजम, ए मेरी ही हस्ती है जिन्हें पत्थर नो पिघला के आईना बनाया है, शीशा बनाया, तू ते पत्थर ही बनाए सन, मैं शीशा बनाया। तू मेरे विच एक कमी रहन दिती कि मेरियां अखां सब कुछ देख सकदियां ने, अपना मुंह नहीं देख सकदियां, तो मैं पत्थर नो पिघलाया, शीशा बनाया, शीशे च अपना मुंह वेख्या, तेरी कमजोरी रहने नहीं दिती। मन आनम के अज संग आई ना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना ए साजम, तू जहर बनाई सी, संखिया बनाया सी, मैं उसनो मार के कुश्ता बनाया है, अमृत बना दिता है, ते मैं करता, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂਜੀ।
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ।

0: सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: इस्ते जी सब्जी भले खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
5: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ
7: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
8: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ
9: ਹਾਂਜੀ
8: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ
9: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਗਣ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਗੋਭੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.